मैं फूल हूँ सुगंध तिमी, मैं चंद्रमा हूँ चमक तिमी, मैं धरती हूँ आकाश तिमी। क्षितिज नै भेटौला मनको प्यास मेटौला, कोमल ओठ तिमी रातो लाली तिमी मेरो।

0: 어디 가 어디야네? 자자자자자자.
1: प्यार से दे रहे हैं रख लो
0: देख देख देख अरे और ये बाप रे बाप स्टाइल तो ब्लास्टिंग मारे लू हो तू चारी भी क्या लिखवा ले तू का अरे रे ए ए
1: आ जिगर पलट